शब्द स्वर ताल लय साहित्य एवं प्राण की धात्री साईं मां की अर्चना।

भगवान बाबा के कथन अनुसार सर्वधर्मों का मूल मंत्र प्रेम प्रेम सच्चा प्रेम ही तो है। प्रभु प्राप्ति का इससे सुगम और सरल उपाय इस विश्व में और कुछ भी तो नहीं है।

ईर्षा द्वेष घृणा विश्व के समस्त अंधकार को मिटाने के लिए पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ही तो प्रभु साईं बन अवतरित हुए हैं।

0: इसे पग पग तू ही संभाले।
1: पार मीन्स बियॉन्ड, लगाले टू टेक, डोल रही है ओ रखवैया इसे तू ही पार लगा ले, प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले। वी क्राई आउट टू द लॉर्ड दैट अ बोट ऑफ लाइफ इज वॉबलिंग एंड वी एंट्रीट हिम टू टेक अस बियॉन्ड द शोर्स ऑफ वर्ल्डली लाइफ बाय लुकिंग आफ्टर अस एवरी मोमेंट। वी मूव ऑन टू द सिक्स्थ लाइन।

साई मींस मास्टर, अपना ले, मेक योर ओन. सो दैट इज द ब्यूटिफुल मीनिंग इनहेरेंट इन दिस लवली भजन विच इज ए वेरी मूविंग प्रेयर टू द लॉर्ड. Let us now proceed listening to the complete version of the bhajan as it is sung by the students of Bhagwan in the Vaishnavi Nilayam Mandir.

0: लक्ष्मणा, ओ रामा, ओ लक्ष्मणा, कम एंड सेव मी फ्रॉम दिस मॉन्स्टर, सेव मी ओ रामा, सेव मी।
1: कटिंग थ्रू द स्काइज द पुष्पक विमान कैरिंग सीता फ्लू साउथवर्ड्स। Hearing Sita's cries, Jatayu, the monarch of eagles, took upon himself the noble task of rescuing Sita despite his old age. He flew across the chariot's path and attacked Ravana, causing him to bleed profusely.

एंड रामा रीच्ड लंका. रावणा रुइंड हिमसेल्फ एंड हिज डायनेस्टी बिकॉज ही कुड नॉट कंट्रोल हिज लस्ट पैशन एंड वाइल्ड डिजायर्स. रावणा एंड कुंभकर्णा रिप्रेजेंटेड द राजसिक एंड तामसिक गुणास रिस्पेक्टिवली एंड अल्टीमेटली वेर डिस्ट्रॉयड

जाल सुख सहज आनंद कने सा संग मिटे पै परमा अमृत हर हर रसन भने रहाओ। चरण कमल स्यो लागो हेत खिर मैं बिन स्यो महाप्रेत आठ पहरो हर हर जप जाप रख नहार गोविंद गुरे आप। अपने सेवक कौसदा प्रतपार है पगजना के सास निहार है मानस की कहो केतक बात जमते राखे दे कर हाथ। निर्मल शोभा निर्मल रीत पार ब्रह्म आया मन चीत कर कृपा गुरदीनो दान नानक पाया नाम निदान। पहरो महला पंजवा करण कारण समर्थ गुर मेरा जी प्राण सुखदाता नेरा। पह पंजन अबनासी राय दर्शन देखे सब दुख जाए जत कत पेखो तेरी सरना बल बल जाई सतगुर चरना रहाओ। पूर्ण काम मिले गुरुदेव सफल दाता निर्मल सेव कर गहलीने अपने दास राम नाम रिद्धियो निवास। सदा आनंद नाही के सोग दुख दर्द न व्यापै रोग सब किश तेरा तू करने हार पार ब्रह्म गुर अगम अपार। निर्मल शोभा अचरज बाणी पार ब्रह्म पूर्ण मन पाणी जल थल महियल रविया सोए नानक सब किश प्रभते होए। पहरो महला पंजवा मन तन राता राम रंग चरने सर्ब मनोरथ पूर्ण करने आठ पहर गावत भगवंत सतगुर दीनो पूरा मंत। सोवट भागी जिस नाम प्यार तिसकै संग तरह संसार रहाओ। सोई ज्ञानी जे सिमरै एक सो तनवंता जिस बुद्ध बबेक। सो कुलवंता जे सिमरै स्वामी सो पतवंता जे आप पिछानी। गुर प्रसाद परम पद पाया गुण गोपाल दिन रहन ते आया। टूटे बंधन पूर्ण आसा हर के चरण रिदमाहे निवासा। कहो नानक जाके पूर्ण कर्मा सो जना आया प्रभ की सरना। आप पवित पावन सब कीने राम रसायन रसना चीने। पैरो महला पंजवा नाम लै तो किश बिघ ना लागै नाम सुन तो जम दूरों भागै। नाम लै तो सब दुख है नास नाम जपतो हर चरण निवास। निर्विघ्न भगत भज हर हर नाओ रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ। हर सिमरत किस चाख ना जो है हर सिमरत दैत देव ना पुहै। हर सिमरत मोह मान ना बदै हर सिमरत गर्भ जोन ना रुदै। हर सिमरन की सगली बेला हर सिमरन बहु माए अकेला। जात अजात जपै जन कोए जो जापै तिसकी गत होए। हर का नाम जपिए साध संग हर के नाम का पूर्ण रंग। नानक कहो प्रभ कृपा तार सा सा सर देहो चितार। पैरो महला पंजवा आपे सास्ते आपे भेद आपे कटकट जाना भेद। ज्योत स्वरूप जाकी सब वत करण कारण पूर्ण समरथ। प्रभ की ओट गहो मन मेरे चरण कमल गुरमुखिया राधाओ दुश्मन दुख न आवै नेरे रहाओ। आपे वन त्रिण त्रिपवन सार जाकै सूत परोया संसार। आपे शिव शक्ति संजोगी आप निर्बाणी आपे भोगी। जत कत पेखो तत तत सोए तिस बिन दूजा नाही कोए। सागर तरिय नाम कै रंग गुण गावै नानक साध संग। मुकत भुगत जुगत वस जा कै ऊणा नाही किस जनता कै।

इसका जी को जरा न मरना। सो सुरतान जो दोए सरतान है, बाहर जाता पीतर यान है, गगन मंडल में लश्कर करे। सो सुरतान शत्र सर तरे, जोगी गोरख गोरख करे, हिंदू राम नाम उचरे, मुसलमान का एक खुदा ए, कबीर का स्वामी रया सुमाए। महल्ला पंजवा, जो पाथर को कहते देव, ताकि वृथा हो वैसेव, जो पाथर की पाई पाए, तिसकी काला जाई जाए। ठाकर हमरा सद बोलंता, सर्व जिया को प्रभ दान देता रहाओ। अंतर देव न जाने अंध, भ्रम का मोहया पावे फंद, ना पाथर बोले ना किश दे, फोकट कर्म ने फल है सेव। जे मृतक कहो चंदन चढ़ावे, उसते कहो कवन फल पावे, जे मृतक कहो बिष्टा माहे रुलाई, ता मृतक का क्या कट जाई। कहत कबीर हाँ कहो पुकार, समझ देख साहित गावार, दूजे पाए बहुत कर गाले, राम भगत है सदा सुखाले। जल में मीन माया के बेदे, दीपक पतंग माया के शेदे, काम माया कुंचर को व्यापे, भयंगम प्रेंग माया में खापे, माया ऐसी मोनी पाई, जेते जीते ते डकाई। रहाओ पंखी मृग माया में राते, साकर माखी अधिक संतापे, तुरे उष्ट माया में पेला, सिद्ध चौरासी माया में खेला, छे जती माया के बंदा, नवे नाथ सूरजर चंदा, तपे रखीसर माया मैं सूता, माया मैं काल यार पंच दूता, स्वान स्याल माया मैं राता, बंतर जीते अर सिंघाता, मांजार गाडर अर लुबरा, बिरख मूल माया मैं परा, माया अंतर पीने देव, सागर इंद्रा यार तरतेव। कह कबीर जैसे उधर तिस माया, तब छूटे जब साधु पाया, जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक नहीं सरे, जब मेरी मेरी मिट जाए, तब प्रभु काज सवार आए। ऐसा ज्ञान विचार मना, हर की ना सिमरो दुख भंजना रहाओ। जब लग सिंह रह बन माहे, तब लग बन फूले ही नाहे, जब ही स्यार सिंह को खाए, फूल रही सगली बन राए। जीतो बूढ़े हार उतरे, गुरप्रसादी पार उतरे, दास कबीर कह समझाए, केवल राम रहो लिवलाए। सत्र सह सलाह रह जाके, सवा लाख पै काम ब्रता के, शेख जो कही है कोट अठासी, छप्पन कोट जाके खेल खासी। मो गरीब की को गुजरावे, मंजर सदूर मैल को पावे, रहाओ ते 30 करोड़ी है खेल खाना, 84 लाख फिर दीवाना। बाबा आदम कहो किश नजर दिखाई, उन पी पिस्त कनेरी पाई, दिल खल हल जाके जर दरूबानी, छोड़क तेब करे सैतानी। दुनिया दोस रोस है लोई, अपना किया पावे सोई, तुम दाते हम सदा पिखारी, देव जवाब होए बजगारी। दास कबीर तेरी पने समाना, पेस्तन जीक राख रह माना, सब कोई चलन कहत है उहां, ना जानो बैकुंठ है कहां, रहाओ आप आपका मर्म ना जाना, बात नहीं बैकुंठ बखाना। जब लग मन बैकुंठ की आस, तब लग नाही चरण निवास, खाई कोट ना परलप गारा, ना जानो बैकुंठ द्वारा। कह कमीर अब कहिए काहे, साध संगत बैकुंठ है आहे, क्यों लीजे गढ़ बंका पाई, दोवर कोटियार तेवर खाई। रहाओ 525 मोह मद मत सर, वाडी प्रबल माया, जन गरीब को जोर ना पहुंचे, कहां करो रगराया। काम केवारी दुख सुख दरवानी, पापन दरवाजा, क्रोध प्रधान महा बड़ दुंदर, तै मनमावासी राजा। स्वाद सनाह टोप ममता को, कबुद कमान चढ़ाई, तसना तीर रहे गढ़ पीतर, इं गढ़ लियो न जाई।
प्रेम पलीता सुरत हवाई गोला ज्ञान चलाया ब्रह्म अग्न सहजे परजाली एक चुट सजाया सत संतोख लै लरने लागा तोरे दुए दरवाजा साध संगत गुर की कृपा ते पकरियो गड़को राजा भगवत पीर सकत स्मरण की कटी काल पै फांसी दास कमीर चढ़ियो गढ़ी उपर राज लियो अविनाशी गंग गुसायन गहर गंभीर जंजीर बांध कर करे कबीर मन ना डिगै तन काहे कौ डराए चरण कमल चित रहो समाए रहाओ गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर मृगशाला पर बैठे कबीर कह कबीर को संग ना साथ जल थल रखन है रघुनाथ पहराओ कबीर जीव अष्टपति कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आगम द्रुगम गढ़ रचियो बास जामै जोत करे प्रगास बिजली चमकै होय आनंद जे पौड़े प्रभ बाल गोबिंद एहो जियो राम नाम लिव लागै जरा मरण छूटै परम भागै रहाओ अबरन बरन स्यो मन ही प्रीत हमै गावन गावै गीत अनहद शब्द होत चुनकार जे पौड़े प्रभ श्री गोपाल खंडन मंडल मंडल मंडा त्रया शांति त्रे खंडा आगम्या गोचर रहया अभ्यंत पार ना पावै को तरनी तरमंत कदली पोहप तू प्रगास राज पंकज मै लियो निवास द्वादश दल अभ्यंतर मंत जय पौड़े श्री कमलाकंत अर्ध उर्द मुख लागो कास सुन मंडल मैं कर प्रगास ऊहा सूरज नाही चंद आद निरंजन करे आनंद सो ब्रह्मांड पिंड सो जान मान सरोवर कर स्नान सो हंसो जा को है जाप जा को लिप्त न होए पुण्य अर पाप अबरन बरन काम नहीं शाम अवर न पाइये गुर की साम तारी न टरै आवे न जाए सुन सज मै रे समाए मन मध्य जाने जे कोए जो बोले सो आपे होए जोत मंत्र मन असर करे कह कबीर सो प्राणी तरै कोट सूर जा कै प्रगास कोट महादेव अर कबलास दुर्गा कोट जा कै मर्दन करे ब्रह्मा कोट बेद उचरे जव जाचाओ तौ केवल राम आन देव स्यो नाही काम राहो कोट चंद्र में करे चराक सुरत तीसो जे वै पाक नाम ग्रह कोट ठांडे दरबार धर्म कोट जा कै प्रतहार कवन पवन कोट चौ बारे फिरे बास कोट सेज बिस्थर है समुंद कोट जा कै पानी हार रुमावल कोटा ठारे पार कोटक मेर पर है भंडार कोटक लक्ष्मी करे सिंगार कोटक पापन बहरै इंद्र कोट जाके सेवा करे छप्पन कोट जाके प्रतहार नगरी नगरी ख्यात्या पार लट छुट्टी वरतै बिकराल।

शब्द स्वर ताल लय साहित्य एवं प्राण की धात्री साईं मां की अर्चना।

भगवान बाबा के कथनानुसार सर्व धर्मों का मूल मंत्र प्रेम प्रेम सच्चा प्रेम ही तो है। प्रभु प्राप्ति का इससे सुगम और सरल उपाय इस विश्व में और कुछ भी तो नहीं है।

ईर्षा, द्वेष, घृणा विश्व के समस्त अंधकार को मिटाने के लिए पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ही तो प्रभु साईं बन अवतरित हुए हैं।